0: हेलो, कोई है क्या?
1: हाय,
0: मुझे जिमी से मिलना है।
1: वन सेकंड। जिमी, हाय।
0: हाय नताशा, आई एम अ ब्लॉगर। आपके केक पेस्ट्रीज के बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज पड़े हैं। आई वुड लाइक टू ब्लॉग अबाउट योर कैफे। डू यू लाइक दैट?
1: आई वुड लव दैट।
0: परफेक्ट, आई सी यू टुमॉरो देन।
1: या श्योर। एक्सक्यूज मी,